छोड़ कर मैं भी सब कुछ सिर्फ सल्ले अला कर रहा हूँ, इसलिए छोड़ कर मैं भी सब कुछ।